0: रेडियो अमन करक आपको दे रहा है एक खुशखबरी। अब आप अपने दिल की आवाज रेडियो अमन करक के साथ मैसेज के जरिए भी शेयर कर सकते हैं। अब आप हर प्रोग्राम में फॉर्मेट के मुताबिक अपनी फरमाइशों और चाहतों का इजहार मैसेज के जरिए कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, वहां पर टाइप करें RAK, फिर थोड़ी सी जगह छोड़कर अपना नाम लिखें, फिर अपने इलाके का नाम और अपना पैगाम लिखकर हमें 8583 यानी 8583 पर भेजें। आपका मैसेज हमारे प्रोग्राम की रौनक।
1: दिन हो या रात, खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो। रेडियो अमन 88.4 कारक आपके हर लम्हे।

0: तड़ाई माशे में जी दार तो ये जी पता शापर सी देता शाय हो खस्ती थी
1: जनाती से तारखे ना पर शापर के हम एश्मा वाशिंग पाउडर हो खस्ती थी
0: एश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस्तर अंगे सरा प्रोवरे
1: बिल्कुल तारखे ना दा गिले वे हर वक्त मुताहा कुर्श कड़ा होचे कराना में कुर्ता एश्मा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े दी और स्टूल कुर वाला ना फसूल दी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब उदार तो ये या चेप एश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना एश्मा वाशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी चे कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात एश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवा लोसीना नखर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दार तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफ बने गलशे अंदरून ला की गेट जान से बे गाले पर शोए मार्केट से देशवा मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर ता मिला भी जी।

0: Τώρα είμαστε με τη Δάρτα που γεγέζει από τα σαπάρ σε τέτοια έχω χωστηθεί.
1: Για να τίσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρταρ έχω χωστηθεί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρταρ. Μάρα είμαι τη μόχο κορτά national or multinational καπνέιβολ βάσινγκ πόρταρ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε δασταράγγε σαρά προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γιλεύε χάρβαχτε μούταχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρταρ βοήβολ σε ρικρέτη. Ο στούλ κούρβολα να χωσούλτη.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सराबरों वो दर तो या चेप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियात थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियात दागा दी चे कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटे सर खत्म करी जाखर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर दा कपड़े सब ही पवा लोसीना नखर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट या दाए दर तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने বলছে আন্দ্রন লাকি গেট জানসেবে গালে পশে মার্কিসে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইরসেপসার অর্ডার তে মেলাবিজি।

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

0: खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज़ रेडियो अमन 88.4 करत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती, सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 करक, आपकी अपनी आवाज़।

0: Τώρα μαζί με τη Δάρτα που γεγίζει από τα σαπάρ σε τέτοια έχω χωστηθεί.
1: Για να τίσε τα αρχανά από σαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ έχω χωστηθεί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ. Μάρα με τη μόχο κορτά national ο multinational καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε δασταραγγε σαρα προβρή.
1: Βέλκολ τα αρχανά τα γιλεύε χάρ βάχτε μούταχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοήβολ σε ρικρέτη. Ο στούλ κούρβολα να χωσούλτη.
0: अच्छा मिस जी ब्याहे कुर्ता जहर सरावरो उदार तो ये या चेप इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सब युक्सले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवात लोसीना नखर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दार तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने গলসে আন্দ্রন লাকি গেট জানজেবে গালে পশে মার্কিসে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইরসেপসার অদরতে মেলাবিজি।

हाँ जी बिल्कुल, कचरते के दोस्तों बिल्कुल, मैदे मसली मैदे मैदा मो जलन के भी और बिल्कुल तो सोख रही नो बिल्कुल अवेचे आजे मकीजु मना या दिन लम अक्सर कल कल आजे हाँ कीजी सार टाइम सकल सड़ाई नष्ट होगी क्या ना नो आगे ना बाद बिया मैदा डेर ज्याद चुकम ने सड़ी जलन के भी इनी मैदा स्वजी नो बिल्कुल आगे दे बरा इश्मा एक वसेर चुकम ने इस्तेमाल वाले शे और याद ही ना लवा बिल्कुल तो जिसम के सह मतलब तकलीफ ही कब वसीर तकलीफ याद ही ना लवा लगा सरंग की खबरों में खड़ा मैदे तकलीफ ही मैदा जलन के भी मैदा मुस्वजी याद ही ना लवा तो जिसम पर कम जीवा ने हाँ दर्द भी नागिद पर बिल्कुल इश्मा हर्बल ऑयल चुकम दे इस्तेमाल वाली शी دین الوا بالکل دسی میلو فیمل حضرات چا وی کنا چیز خلی لی دشو خیستا صورت خیستا خار گنا نو بالکل اگا چکم دے اشما فارمولا بیوٹی کریم استعمال والی شی

हाँ जी बिल्कुल, यू नजर सिर्फ मैसेज बने को भी बार डायरेक्ट कॉल तरह तस्वीर प्रोग्राम के बिल्कुल कॉल चुकुन दगाशे मिले भी ठीक से बिल्कुल हान मनकिल मसे मैसेज करे देगे ना वेचे लिसनर तरीखान ओ मिस डीओ द पशान लकज मरी हो माशाल्लाह वेचे अस्सलाम वालेकुम तारिक सिर्फ खैर रागले संग गई वेचे कृता वाला है बिल्कुल आवश्यक जबरदस्त माशाल्लाह ये चेरे करे खिलोड़ी बने आवाज ओके क्लियर दे इट्स मी बनी गुल किंग गुलाई फ्रॉम खकी विच मिस डी मामू जानता हूँ सलाम वालेकुम असलाम विच लोही सड़े डेर मन ना लोही खतर शिशा विच तारक सर खकी के सादिक मार्केट के इशमा टोल प्रोडक्ट चुकम दे मिला वी जी समी सरा समी कॉस्मेटिक सरा रहीम रहीम रहीम

जी सही बिल्कुल कॉल चुके मिल लीजिए 0331 5352 340 या दिन लवा 0345 9 33 25 80। कैसे जी बगल बने बरसों को दिखे मैं नरसी 0345 9 33 25 80। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खजी बिल्कुल तुसे अबोज नरदरी में कैसे जी बकाल बने बरसों को दिखे मैं नदी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खजी बिल्कुल

वाह वाह वाह, लाजवाब, जबरदस्त, डेर जबरदस्त, डेर बेहतरीन, डेर खानदा और डेर खानदी ओको डेरा मजाए ओकड़ला दखो दे परिश्तिया जाले भी रोड़िये वे मुख वेचे कटोके कावे आई शाबाश सर सा चलिश की दावोस दार बंदो और वो दायो बिया और वो शादो चालो जी जेरा जेरा मनना शुक्रिया थैंक यू वेरी मच खुशहाल देखुड़ा अबुदा देखुड़ा खुशली आवाज खुशली अल्फाज।

फर्स्ट मैसेज रोजा चाह खड़ा हुआ है असलामुअलैकुम स्वीट भाई जानी, दिस इज मी वन एंड ओनली यूर फैन क्यूटर शी खान कैफा हालो खां वाजी वाह आप जी जनाब जी वेलकम बहुत अदब के साथ हमारे गुलगुल एंड बुलबुल मोहतरम एंड खुसूसी कदरदान एंड नजवल शेस्ता एंड हिस्ता डायमंड एंड गुल गुलाब एंड चम्बेली की तरह मेरे प्यारे से अनमोल लवली एंड किश मैश वी आई पी स्वीट भाई जानी को असलामुअलैकुम।

सही सही सही सही मेक यू टू जहां सेठ भाई जानी फॉर यू जहां अच्छा है जनान दिलाड़ शी खफा नहीं हम जनान दिलाड़ शी खफा नहीं हम पशाद न रगोरी हौजड़ में फसे छुना डेरा सेट अपा यो जहान मनना विचारी ना दिया बहारा